0: चखावे।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे घने बिहड़ और अनजान जंगल की कल्पना की है, जहां दूर दूर तक कोई पगडंडी ना हो और दिशाओं का कोई निशान भी ना हो, चारों तरफ दलदल और कांटेदार झाड़ियां फैली हो। उस जंगल को पार करने के लिए बड़े बड़े विद्वान, नक्शानवीस और बलशाली लोग अपनी किताबों, औजारों और अनुमानों के सहारे घूमते हैं। वे दिन रात भटकते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन अंत में रास्ता ना मिलने पर निराश होकर, थक हार कर किसी पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं कि इस जंगल को पार करना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक छोटा सा बालक आता है जिसके पास न कोई भारी नक्शा है और न कोई हथियार। उसके पास केवल उस जंगल के किसी पुराने और मंझे हुए मार्गदर्शक का हाथ है। वह उस उस्ताद की उंगली पकड़ता है और खेल खेल में सहजता से उस पूरे बिहड़ जंगल को पार करके उस पार के सुंदर नगर में पहुंच जाता है। परमात्मा का मार्ग भी बुद्धिमानों के लिए ऐसा ही एक बिहड़ जंगल है, जहां बड़े बड़े तर्क थक कर बैठ जाते हैं। कबीर साहब आज हमें उसी परम मार्गदर्शक और उसकी उंगली पकड़ने का रहस्य बता रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम दार्शनिक सूत्र। कबीर मार्ग अगम है, सब मुनि जन बैठे थाकी, जहाँ कबीरा चली गया गई सद्गुरु की साखी।

गही सदगुरु की साखी रे साथ हो, गही सदगुरु की साखी। श्रोताओं, कबीर साहब परम तत्व की प्राप्ति के मार्ग की दुर्गमता और उसकी सहज कुंजी को खोलते हुए कहते हैं, कबीर मार्ग अगम है। यह जो आत्मज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग यानी पथ है, वह सामान्य बुद्धि, तर्क, शास्त्र और इंद्रियों के लिए अत्यंत अगम यानी अगम्य और पहों से बाहर है। सब मुनि जन बैठे थाके और परिणाम यह हुआ कि बड़े बड़े मुनि जन यानी वेद शास्त्रों का मनन करने वाले विद्वान, तपस्वी और ज्ञानी अपनी मानसिक चेष्टाओं, हठ तपस्याओं और भारी भरकम विधियों के बोझ तले बैठे थाके बुरी तरह थक कर निराश होकर बीच रास्ते में ही बैठ गए, उस पार नहीं पहुंच सके। लेकिन कबीर ने उस अगम मार्ग को कैसे पार किया, अगली पंक्ति में वे इसका सीधा और सहज रहस्य उद्घाटित करते हैं। तहां कबीर चला गया जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि थक कर रुक गए, उस परम शून्य और अगम धाम में कबीरा चली गया। यानी कबीर सहजता से आगे बढ़ता हुआ सीधे उस पार पहुंच गया। कैसे? गही सदगुरु की साखी, क्योंकि कबीर ने अपनी बुद्धि का घमंड नहीं किया, उसने केवल सदगुरु की साखी यानी सदगुरु के प्रत्यक्ष अनुभव, उनके जागृत शब्द और साक्षी भाव के सहारे को पूरी दृढ़ता से गही यानी थाम लिया। गुरु के इशारे ने उसे बिना फटके सीधे परमात्मा के द्वार तक पहुंचा दिया। यह दोहा केनोपनिषद के इस सत्य का जीवंत प्रमाण है कि ब्रह्मा बुद्धि का विषय नहीं है। जो सोचते हैं कि बुद्धि से जान लेंगे, वे नहीं जानते कि बुद्धि से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। मुनिजन प्रतीक है बौद्धिक विश्लेषण, शास्त्रार्थ और व्यक्तिगत साधना अहंकार के। बुद्धि एक सीमा के बाद थक जाती है क्योंकि वह द्वैत में काम करती हैं। साखी कबीर के दर्शन का वह केंद्रीय तत्व है जहां जीव कर्ता भाव छोड़कर केवल दृष्टा और समर्पित हो जाता है। सद्गुरु का ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवित अनुभव है। कबीर समझा रहे हैं कि जहां बुद्धि के पहिए थम जाते हैं, वहां सद्गुरु की शरण और उसकी साखी चेतना ही साधक को भवसागर के पार ले जाती हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी साधना और अपनी सोच पर नजर डालिए। क्या हम भी अपनी जिंदगी के संशयों और सुखों को दुखों को पार पाने के लिए केवल अपने दिमाग, अपनी चालाकियां और तर्कों के घोड़े नहीं दौड़ा रहे? हम हर चीज को अपनी सीमित बुद्धि से हल करना चाहते हैं और अंत में केवल मानसिक तनाव और थकान ही हाथ लगती है। आज कोशिश कीजिए अपनी इस बौद्धिक थकान को उतारने की। अपने तर्कों का बोझ एक तरफ रखिए और सद्गुरु के वचनों को, उस राम नाम की साखी को पूरी निष्ठा से थाम लीजिए। जब आप कर्ता बनने की जिद छोड़कर साक्षी भाव में टिक जाएंगे और परमात्मा की शरण स्वीकार कर लेंगे, तो जीवन का कठिन से कठिन और अगम मार्ग भी आपके लिए बिल्कुल सहज, सरल और आनंदमय बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ और एक बार फिर जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीख रहे हैं, जिसे हम लाइफ स्किल्स कह रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला में बहुत कुछ नया सीखा अपने बारे में और देखा कि किस तरह से माइंड पावर, थॉट पावर जो है वो ना सिर्फ मेरे रिश्तों को, मेरे पूरे जीवन को, बल्कि मेरे बॉडी की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी ठीक करने में हमारी बहुत मदद करता है। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इश्यूज जो रिजॉल्व नहीं किए हैं हमने, जो हमारे बैकलॉग में चल रहे हैं, बार बार बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करें। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बहुत सारी बातें तो आपने हमें हमारी बॉडी के बारे में अवेयर करके बताई, ये भी बताया कि एक एक थॉट, एक एक फीलिंग कैसे विजुलाइज करके हम उसको हील कर सकते हैं। बात करते हैं उन मुद्दों की जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमने पहले भी इसी श्रृंखला में बात की थी कि वो नहीं छूटती हैं, वो जो एक दर्द है, एक गुस्सा है, एक हर्ट है, मतलब वो थॉट आते ही, वो घटना सामने आते ही वो सब कुछ सामने आता है और बहुत मुश्किल होता है पास्ट से निकल पाना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कम आउट?
1: सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसकी इफेक्ट कितनी पावरफुल हो रही है बॉडी पर। आज कई बार कोई इस प्रकार के इमोशंस हो, इमीडिएट हार्ट अटैक आ सकता है। हेंसेल की, जिन्होंने स्ट्रेस पर बहुत काम किया है, उनका कहना है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, उनका कारण है कि वह किसी को माफ नहीं कर पाते और वह जो फीलिंग है उसके कारण उनको इस प्रकार की बीमारी भी हुई। तो जब जब भी वह फाइल खुलती है तो सारी नेगेटिव इफेक्ट, न केवल मन पर, आपने जो कहा मन पर तो इफेक्ट हो ही रही है, कि बॉडी पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। यह भी एक पावरफुल रीजन है कि इन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जितना उससे ऊपर उठेंगे तब ही आप पूरे स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकेंगे।
0: तो क्या करें, मतलब हर बार यही आ जाता है सवाल कि क्या करें, ये रिजॉल्व करें और कैसे करें, उस पर आते हैं। पहले ये बताएं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आई थिंक समवेयर वी नीड टू नो कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, मुझे धोखा दिया था, चीट किया था, बिजनेस में किया था, रिश्ते में किया था, वो मुझे याद आता है और मुझे सारा गुस्सा फिर आता है, लेकिन आता है, उसके थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद चला जाता है क्योंकि बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मेरी बॉडी पर उसका असर क्या पड़ रहा है?
1: तब यही जो टॉक्सिक इमोशंस का हमने समझा था वो सारी इफेक्ट होती है, क्योंकि फिर से सिंपैथेटिक अराउजल होगा, बॉडी पर उसकी इफेक्ट होगी, एंडोक्राइन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम, दैट विल अफेक्ट यू। आपकी जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी भी सप्रेस्ड होगी, तो इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होगा, वो ब्रेन के 900

0: करनी पड़ती है.
1: व्हाट अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन हियर? इतनी टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट की हुई हैं इतने सालों से, कई बार तो जैसे बचपन से हमने पकड़ी हुई हैं वो बातें, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे अगर, तो व्हाट मिरेकल्स इट कुड क्रिएट. क्योंकि जब भी कोई अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इमिजिएटली फील करता है कि मैं रिजुविनेट हो गया, इट्स लाइक अ न्यू बॉडी ऑल टुगेदर
2: हो जाता है बिल्कुल.
1: क्योंकि इट्स लाइक पॉइजन, इट्स लाइक यू नो ये सारा जो गंद था वो मेरे शरीर से निकल गया. अब इसी तरह जो सारा गंद मैंने यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है, इसको अगर मैं क्लीन कर दूँ तो हमें हम कितना हल्का महसूस करेंगे यहाँ. आई विल फील लाइट, और जितना पकड़ कर रखा है आई फील वेरी हैवी. तो लेट्स स्टार्ट डिटॉक्सिफाइंग द माइंड, डिटॉक्सिफाइंग द सोल.
3: एंड दिस इज नो मोर नेसेसरी, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो तो मृत्यु के बाद चले जाएंगे, कि यहाँ जो टॉक्सिन्स आपने भर के रखे हो दूसरे जन्म में भी आप कैरी ऑन करने वाले.
2: फिर हम वो कहेंगे कि पास्ट लाइफ के कारण हो रहा है ये सब कुछ, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर कैरिंग.
3: हाँ, और दिस कैन बी अ पावरफुल मोटिवेशन. अभी भी कुछ समय पहले मेरे पास एक पेशेंट था, वो करीब 25 साल का लड़का होगा, फादर के प्रति उसको बड़ी हेट्रेड थी, क्योंकि फादर ने बचपन में उसको बाहर नहीं जाने देते थे, घर में ही रखते थे. लोअर मिडिल क्लास एरिया था कि भाई गलत संगत में आ जाएगा, और उसके कारण उसमें डर निर्माण हो गया. वो अभी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, लोगों को मिल नहीं पाता है, तो बड़ा हेट्रेड था फादर के प्रति. एक दो सेशन के बाद मैंने उसको कहा कि तुमने किया, उससे ऊपर कहते नहीं नहीं हो सकता है. फिर एक दिन बोलता है डॉक्टर साहब करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ. फिर और एक सेशन में मैंने कहा देखो अभी आपने नहीं किया ना, तो अगले जन्म में भी तुम इसको ले जाओगे. फिर नेक्स्ट सेशन हाँ हाँ नाउ आई एम फ्री. मुझे इससे मोटिवेशन मिल गया कि अगर अभी मैं फ्री नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी इस हेट्रेड को, इस रिवेंज को मैं ले जाऊंगा, तो मैंने उसको पूरा छोड़ दिया.
2: इट्स अ वंडरफुल थिंग. एक्चुअली वो रिवेंज और हेट्रेड, उससे निकलने के लिए हम लोगों को छोड़ते हैं, व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, जिंदगी मतलब किधर किधर किधर घूमते हैं.
1: सी, हम लोगों को छोड़ सकते हैं. सपोज मेरा आपके साथ चीट, आपने मुझे किया, मैंने आपको छोड़ दिया. चलो लेट मी से कि देर इज नो अदर सोल्यूशन, मुझे आपसे अलग होना है. मैंने आपको छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन क्या नफरत को छोड़ दिया? उस नफरत को तो फिर भी पकड़ के रखा ना, तो आपसे विड्रॉ हो गई. इट वॉज नॉट अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम पीपल, इट वॉज अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम द इमोशन. बट वी विड्रॉ फ्रॉम पीपल, होल्ड ऑन टू द इमोशन. सो द डैमेज इज मल्टीफोल्ड, कि मैं बार बार बार बार वही चिंतन कर रही हूँ. एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो शरीर का बेनिफिट है, लेकिन माइंड अगर टॉक्सिक है तो वो माइंड तो हर काम कर रहा है ना, हर रिश्ते में जा रहा है, हर प्रोफेशन में, मेरे हर फील्ड में वो टॉक्सिक माइंड वर्क कर रहा है. इसका मतलब मेरे जीवन का हर क्षेत्र ही अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज द माइंड इज डूइंग एवरीथिंग.
2: एक्चुअली हर चीज में रिजेंटमेंट, ट्रस्ट ना करना.
1: सो इट्स नॉट अबाउट वन एस्पेक्ट द माइंड. देखो सपोज माई बॉडी इज टॉक्सिक, चलो मेरा शरीर ठीक नहीं चलेगा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मेरे रिश्ते तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं बॉडी डजंट डू एनीथिंग इनटू द रिलेशनशिप्स. मैं अपने करियर में तो फिर भी थोड़ा ठीक चल लूंगा, बट माय माइंड इज एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, हर स्फीयर पे मन है. इस पे टॉक्सिन्स अगर है मीन्स देयर इज गोइंग टू बी डैमेज एवरीवेयर. फिर मैं हर एक से नाराज होता रहूंगा, घर में लोगों से, प्रोफेशन में अपने कोलीग से, हर एक से नाराज होता रहूंगा विदाउट रियलाइजिंग कि जहर तो यहाँ भरा हुआ है.
2: मतलब वो एक जहर की जो एक वो नहीं कैरी करते थे पुराने जमाने में कि अंगूठी में डाल के रखते थे. सी आई थिंक हर बार एक ड्रॉप उसका वो डाल देते हैं. डॉक्टर साहब, डिटॉक्सिफिकेशन की बात की सचिव शिवानी ने, कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, उसकी तो टेक्निक्स हम समझ गए, ऐसी डाइट. अब इसको करें कैसे? नहीं होते रिजॉल्व. कितनी कोशिश करते हैं, इट जस्ट यू नो इट्स लाइक आई विल नॉट से इट कम्स, बट आई क्रिएट, कंटिन्यू टू क्रिएट इवन इफ आई डोंट वॉन्ट टू. It just comes.
1: It's because we don't want to forgive. Forgiving is not difficult. Forgiving is very easy.
2: We don't want to forgive.
1: अब मैं क्यों नहीं forgive करना चाहती? क्योंकि गलती उनकी इतनी बड़ी थी, दर्द मुझे इतना हुआ था, तो क्यों मैं फॉरगिव करूं? अगर मैं फॉरगिव करती हूं तो फिर वो और वो ही करेंगे. यू नो कितना ज्यादा हम
2: इस बारे में हो जाएंगे फिर.
1: अगर मैं ही बार बार माफ करती रहूं तो वो तो फिर से, चलो कुछ होती हैं जीवन की बड़ी बातें जिसमें यू नो विच कैन बी लाइफ चेंजिंग, लेकिन छोटी छोटी बातों में ले लेते हैं. सारा दिन बातें हो रही हैं जो हम कहते हैं मैं अगर हर बार इसको बात को हल्का कर दूं, माफ कर दूं, तो ये तो हर बार करते जाएंगे, तो औरों को सुधारने के लिए अपना नुकसान. एंड फिर वो इतना संस्कार पक्का होता जाता है, इट बिकम्स माई नेचर टू होल्ड थिंग्स अगेंस्ट.

0: पीपल नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव बिकॉज आई से उनकी गलती इतनी बड़ी थी. बहुत सारे भाई बहने हमें मिलते हैं हु आर कैरिंग बर्डन पास्ट. हुआ है जीवन में, इट कुड बी एनीथिंग. कुछ समय पहले एक बहन से मिलना हुआ जो ये टेलीविजन का प्रोग्राम काफ़ी समय से देख रहे हैं, और उन्होंने आकर अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो 11 वर्ष की थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक दिन अपने किसी दोस्त के घर भेजा जो अकेला था. वो अबाउट 50-year-old पर्सन था जिसकी फैमिली किसी और सिटी में गई थी. तो पेरेंट्स ने कहा वो अंकल अकेले हैं, आप आज उनके घर चले जाओ. And that person, and this girl was 11 years old. That 50-year-old man physically abused this 11-year-old girl. Today, that lady is 40+. She's 40+. लेकिन ये 30 साल से ऊपर की जर्नी में उसने अपने पेरेंट्स के प्रति नफरत पकड़ के रखी है. She openly says, I hate my parents. I thought she'll say, I hate that person, जिसने ये किया. She said, उससे मुझे कोई इतना लेना देना नहीं. गलती किसकी थी इसमें? मेरे पेरेंट्स की जिम्मेवारी थी मेरा ध्यान रखना. मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहां भेजा, तो पूरी गलती मेरे पेरेंट्स की. शी इज कैरीड दैट रिजेंटमेंट इन हर फॉर मोर देन 30 years नाउ. रिजल्ट, आज वो एडिक्शंस में है और वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल के आ रही. कितनी इतनी नफरत मेरे अंदर भरी है कि जब तक मैं ये नहीं लेती आई डोंट फील गुड एट ऑल. नहीं तो वो माइंड में मेरे वही थॉट्स चलती रहती हैं. मैरिज हुई, बेटी है, लेकिन डिवोर्स हो गया, हस्बैंड के साथ नहीं बनी. करियर वाइज कुछ भी नहीं कर पा रही. फिजिकली भी कुछ एक एलिमेंट्स लगी हुई है. पेरेंट्स के साथ रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बना, ओनली बिकॉज 30 years से ऊपर वो नफरत पकड़ के रखी है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये रिजेंटमेंट नहीं कैरी कर सकते, इवन इफ द पास्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी वेरी डैमेजिंग. चाहे कुछ भी हुआ हो, वी नीड टू फॉरगिव, क्योंकि उसी से हमारी हीलिंग होगी. नहीं तो उस बहन को देखकर मुझे लगा, देखो पूरी जीवन इस नफरत को पकड़ने की वजह से इमोशनली, फिजिकली, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशन, चारों एस्पेक्ट्स पर कहीं भी हेल्दी नहीं चला.
1: आई थिंक डॉक्टर पटेल, क्यों हम फॉरगिव नहीं करते? क्योंकि शायद हम उससे पहले, उस इंसिडेंट से पहले जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन चाहते हैं. तो अब वो तो आएगा नहीं, क्योंकि लगता है वो तो खत्म हो गया. तो इसीलिए अब वो प्राप्ति तो होने वाली है नहीं, इसलिए हम फॉरगिव नहीं करते हैं. हम उसको पकड़ के रखते हैं या रिजेंटमेंट या गुस्से में रहते हैं कि वो तो प्राप्त नहीं होगा, वो तो वापस नहीं मिल पाएगा जो था हमारा इतना सुंदर.
2: नहीं, हम अपने डैमेज तो सोचे ना. वैसे शिवानी बेन ने कहा, मुझे मेरे दो पेशेंट के एग्जाम्पल याद आए. भाई यहाँ तो डिप्रेशन सिर्फ हुआ है, वहां तो सिज़ोफ्रेनिया हुआ है. बोथ ऑफ देम वर फिजिकली अब्यूज्ड. आज दोनों सिज़ोफ्रेनिक हैं. तो देखो, उन्होंने इतना उसको दिल पर ले लिया कि पागलपन आ गया. तो अगर वहीं पर माफ कर देते जल्दी से, कोई टेक्निक को अच्छे से समझ लेते, तो बीमारी नहीं होती.
1: माफ करना क्यों जरूरी है?
0: क्योंकि माफ करने से मेरी कितनी सारी हीलिंग हो गई ना. देखो, जैसे गिरीश भाई ने कहा, एक एक थॉट हमारे सेल पर वर्क कर रही है, माइंड पर वर्क कर रही है, हमारे बॉडी के हर सेल पर वर्क कर रही है. तो हेट्रेड की थॉट है ना, आई एम कैरिंग अ होल बंच ऑफ थॉट्स ऑफ हेट्रेड. तो पूरे इफेक्ट नहीं आएगा. एनर्जी है, वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होंगी. जिनसे भी मैं मिलूंगी उनको मुझसे कौन सी वाइब्रेशंस मिलेंगी? इट्स लाइक द परफ्यूम यू आर यूजिंग, That is your energy. तो अगर आपने नफरत की परफ्यूम यूज की हुई है, आपके किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा. आई कम नियर यू एंड आई मूव अवे. कई लोगों से जब हम मिलते हैं, हमें लगता है नॉट वेरी कम्फर्टेबल इनसे मिलने से. कुछ हुआ नहीं, कहेंगे इनका ऑरा बहुत भारी है, इनकी वाइनो बहुत भारी भारी है ये. कुछ लोगों से आप मिलेंगे, आपको लगेगा इनसे मिलकर अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ वॉट पैकेट दे आर कैरिंग हियर. तो इसलिए आपका सिर्फ एक रिश्ता नहीं खराब होता, यू नो, जिसमें आपने वो एक्सपीरियंस किया. आप किसी भी रिश्ते को ब्यूटीफुली नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, क्योंकि आपकी अपनी ऑरा बहुत भारी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जीवन, ठीक है, एक हादसा कितना भी पड़ा, एक हुआ है, देयर इज लॉट्स मोर टू हैपन. बहुत कुछ है जीवन में और, लेकिन अब आगे की डेस्टिनी, इसके बाद मुझे कैसी क्रिएट करनी है, दैट्स कंप्लीटली इन माई हैंड्स नाउ. नफरत पकड़ के रखो, दिस विल बी द डेस्टिनी. फॉरगिव, The world will be beautiful for me. There was another lady. She was abused when she was a child. Today she's 35 plus. I think she's one of the most sincere watchers I have seen of this program. Ek bhi episode shayad nahi miss kiya, notes banaye, study kiya. She had been physically abused. And ek din wo program mein baithi thi, live program mein. And humme us pe commentary kar rahe the ki let go. Jinko bhi humne aaj din tak pakad kar rakha tha, aaj hum unko jaane dete hain. After the program, she got up and said, 30 years ke baad, aaj us vyakti ko jaane diya. Us ek incident ki wajah se, she did not get married, logon se wo dur ho gayi. She said, I hate people. Us ek experience ki wajah se. Lekin thodi der baithi, uske damage ko samjha. She said, I let him go today. Jeevan parivartan ho gayi. Today she's a different person. So, hum hi khud ko damage karte, hum hi khud ko heal kar sakte hain. This is tremendous power that we have.
2: Really, you know, this is powerful. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है. और एक इम्पोर्टेंट बात की भी, क्यों मैं माफ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे कारण मेरे पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ. मैं तुमको माफ नहीं करना चाहता हूँ, इट्स ओके. लेकिन मेरे पर जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, एटलीस्ट आई वांट टू राइज अबाउट दैट.
3: तो मैं अपने आप को तो माफ करूँ कम से कम.
2: नहीं, उसको ही माफ कर, तभी वो इन्फ्लुएंस से आप ऊपर उठेंगे. तो मेरे फायदे के लिए मैं किसी को माफ कर रहा हूँ, तो करना ही चाहिए.
0: एंड माफ करना मतलब भी क्या, मतलब उस इंसिडेंट और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद. इट डजंट हैव टू कम बैक ऑन माई माइंड, दैट इज माफ करना ना. माफ मीन्स वो बात बार बार बार बार मेरे माइंड में चलती रहती है, वो थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं. माफ करना नीड नॉट मीन कि मैं उनके साथ जाकर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन जाऊँ. माफ करना इज नॉट कि मैं उनसे रोज बातें. माफ करना जस्ट मीन्स वो मेरे चित्त पर अब नहीं है,
3: वो मेरे थॉट्स में ना आए, मैं उनके वो जो फीलिंग्स थी वो ना. बट इज इट पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं होता ना. सी अगेन व्हेन इट okay, I create, but then वो जब क्रिएट कर रही होती हूँ मैं, तो मैं उसके वश में हूँ.
0: तो अपने आप को फिर से समझाओ ना. सी अगेन अवेयरनेस, ये थॉट्स आ रहे हैं, मैं फिर अपने आप को समझाऊँ. एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, बाकी नुकसान मैं अपने कर रही हूँ. एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, जो भी किया, बिजनेस में चीट किया, अब्यूज किया, जो एक नुकसान किया, yes, that person has done what damage. बाकी नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ. टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, दिस इज चेंजिंग माई थॉट्स. और इसमें परमात्मा का प्यार और शक्ति हमें वो हील करने में मदद करता है. कोई मेरे साथ अगर ऐसा करता है, कोई भी प्रकार का धोखा, इट्स अ रिजेक्शन. मुझे एक रिजेक्शन मिलता है किसी रिश्ते में, परमात्मा से मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो मेरी हीलिंग को ईजी कर देता है. जस्ट बिकम्स वेरी सिंपल टू डू द प्रोसेस. बट ओनली इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, डैमेज उन्होंने नहीं किया, ये रिपीटेड करने से डैमेज मैं कर रही हूँ. दिस आई हैव टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ. आपको बिजनेस में किसी ने चीट किया, क्या नुकसान किया, पैसे ले गए ना आपके, सारे पैसे ले गए लेट से. लेकिन आपके मन का, शरीर का और आपके रिश्तों का अब नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ. किसी ने आपको फिजिकली अब्यूज़ किया, फिजिकली किया ना, लेकिन अब माइंड का, relationships का, profession का नुकसान मैं कर रही हूँ. This is how I will have to keep talking to myself and come out of it.
2: और कुछ powerful examples भी याद करो. Graham Stein का उदाहरण बहुत सारे लोगों ने सुना है कि जो उड़ीसा में एक फादर थे, उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया था. तो एक साल के बाद पत्रकारों ने उनकी पत्नी को यह प्रश्न पूछा कि आपके पति और बच्चों के हत्यारों के बारे में आपके दिल में कैसी भावनाएं. तो उस महिला ने बहुत ही पावरफुल उत्तर दिया. उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन मैंने उन्हें माफ कर दिया था. तो बताने में भी जबरदस्त शक्ति चाहिए.
3: तो उनका जो रख के भी क्या फायदा,
0: इट्स नॉट अबाउट क्या फायदा, शी चेंज्ड हर डेस्टिनी. वो पूरा परिवार अपना देश छोड़ के इन लोगों की सेवा के लिए आए थे. इन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया. नाउ दिस लेडी, शी इज लॉस्ट ऑल हर थ्री फैमिली मेम्बर्स. शी कुड हैव लिव्ड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन पेन. शी इज वर्किंग टुडे विद द सेम पीपल. शी इज सर्विंग देम, शी इज हेल्पिंग देम, शी इज चेंज्ड हर डेस्टिनी. आप वो सिचुएशन को तो नहीं चेंज कर सकते हो. यू कैन गेट दोज पीपल बैक, बट यू कैन चेंज हाउ यू आर गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड. दैट्स द पावर, क्रिएटिंग माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर, not only holding back my past. This is the power we have.
3: In fact,
2: no, remember such example. Aur isme bahut bada healing power hai. Kehte I forgive you, ये तीन शब्दों में बहुत जबरदस्त शक्ति है बस।
1: यहाँ एक मेरे को एक और भी एस्पेक्ट लेना है रिजेक्शन का, जो आपने कहा कि ये तो सिचुएशंस वो थी कि लोग चले भी गए और लोगों से मैंने अपना नाता भी नहीं रखा बिकॉज आई वॉज रिजेक्टेड या मुझे धोखा हुआ। देर आर टाइम्स वेन आई हैव बीन रिजेक्टेड बट आई एम वेटिंग। आई नो समबडी जो एक रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ और उसके बाद वो लड़का कहीं गया, लड़की यही है, अब वो रिजेक्शन है या जो भी, द गर्ल इज स्टिल वेटिंग, यू नो, वो वेट, और उसके प्रति वो नफरत भी है कि मुझे रिजेक्ट किया, किस कारण किया क्या, और वो जो वो वेट, तो आज भी पूरा जीवन, 2 साल बाद भी वो जीवन वैसा का वैसा है और आना वेट भी, और तो ये इसको कैसे हील करें, क्योंकि ये पूरी जिंदगी एक तरह के रिजेंटमेंट में चल रही है, बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो और खराब होने शुरू हो गए क्योंकि वेट जो है वो बहुत पेनफुल है और ऑब्सेशन, उसको कैसे हैंडल करें।
2: भी अपोजिट है नहीं, यहाँ पर जो लेट गो करने की बात थी, हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में वो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट इतना पावरफुल है कि व्यक्ति डिटैच नहीं हो पाता है। तब अगर ये अच्छी तरह से मन को समझाए कि डिटैच होना ही मेरे लिए सॉल्यूशन है, मैंने अटैचमेंट रखा तो मेरी सुख शांति आनंद सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस कुछ भी हो जाए मुझे डिटैच होना है।
1: अच्छा, हम अगर ऑब्सेशन की बात करते हैं रिलेशनशिप में कि वो व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो गया और दूसरा व्यक्ति चला गया है,
0: कुछ नहीं है इसमें, एक ही थॉट है, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, एक थॉट है, which is not true. ये सच नहीं है ये thought. लेकिन ऐसे situation में ये लोग अपने आप को वही thought देते जाते हैं। हमारे पास इतनी लंबी लंबी email आती है, I just cannot live without this person. Says who? Says me. Change what you're saying to yourself because this is not true. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बिना हमारा जीना बंद हो जाएगा। लेकिन I love to give myself this thinking कि मैं इसलिए दर्द में हूँ, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। तो जब तक आप अपने आप को वो thought दोगे, आपको वही feeling आएगी, आपकी वो wait period चलती रहेगी। Change your thought pattern. I am a powerful soul. मेरी लिविंग, मेरी हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था उनके साथ, यू नो, बात करना, रिश्ता, वो ठीक है, बट डिपेंडेंसी नहीं है। इमिजिएटली आई विल बी एबल टू गेट बैक माई सेल्फ टू दैट डिग्निटी। ये एक्चुअली अपनी डिग्निटी को बहुत नीचे कर देना है कि एक किसी की वजह से आई एम नॉट रेडी टू लिव, आई कांट डू विदाउट दिस पर्सन।
1: इनफैक्ट उसके बारे में हम बात भी नहीं कर पाते किसी और से क्योंकि अंदर अंदर खुद को बहुत बुरा लग रहा है।
0: नहीं, और खुद पर बहुत गुस्सा आता है, पता
1: कि हम क्या कर रहे हैं।
0: खुद से नफरत होती है कि मैं कितनी कमजोर हूँ। इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन कि मैं इस ड्रग के बिना नहीं रह सकती, मैं इस सिगरेट के बिना नहीं रह सकती, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती। तो जैसे बाकी एडिक्शन से हम अपने आप को ज़बरदस्ती हटाते हैं ना, सपोज आई वांट टू गिव अप सम एडिक्शन, मैं उसको ज़बरदस्ती छोड़ती हूँ, थोड़े दिन तकलीफ होगी, इट्स अ विड्रॉल सिम्टम। इसी तरह ऐसे रिश्ते में भी जो नहीं वर्कआउट कर रहा, आपको अपने आप को ज़बरदस्ती हटाना है, यू विल हैव टू ब्रेक अवे। थोड़े दिन तकलीफ होगी लेकिन उस तकलीफ में अपनी काउंसलिंग खुद करते जाएंगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करते जाएंगे, धीरे धीरे एडिक्शन ओवरकम हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, फिर बीच में कहते हैं मैं एक बार फोन करके बात कर लूं, मैं बस 2 मिनट के लिए बात कर लूं। तो इट्स लाइक 10 दिन मेहनत किया, 10 दिन मेहनत किया, सिगरेट छोड़ा, विड्रॉल सिम्टम हुए, थोड़ी सी विल पावर आई, फिर जाके एक सिगरेट ले ली, तो आपका वो पूरा 10 दिन का एफर्ट वेस्ट हुआ। यू हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन। सोचे, डिसाइड करें, यू वॉन्ट टू मूव अवे, डू इट स्ट्रिक्टली। एवरी वन हैज द पावर टू डू इट, इट ओनली डिपेंड्स आप अपने आप को कौन सी थॉट्स देंगे। हम अपने आप को ही, यही अगर आपके आसपास किसी और को हो रहा होता, आप उनको क्या थॉट्स देते? कहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जो थॉट्स आप दूसरों को देते हैं, वही थॉट्स अपने आप को देने हैं।
2: और देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो अपने आप को ये सोचो कि भी और क्या क्या संभावना है। ये एक व्यक्ति से मैं अटैच हूँ, उसको छोड़ नहीं पा, और कुछ संभावनाएं हैं वो लिखो सचमुच, तो भी आपको मिल जाएगी कि भी और भी कई संभावनाएं हैं। आई कैन मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स, मैं कोई अच्छा प्रोफेशन कर सकती हूँ, और कोई मेरे लिए अच्छी संभावनाएं हैं। और एक बात ये बहुत समझने की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे केसेस में कि अगर वो अटैच ही रहे तो दुख में जीवन जिया, डिप्रेशन में जिया, बीमारियां आई, ख़त्म हो गए, और जो इससे बाहर निकल गए तो फिर उनका जीवन और बहुत अच्छा हो गया। इवन बाद में तो ये कहने लगे कि अच्छा हुआ कि हम इससे बाहर आ गए, अगर नहीं आते तो शायद हमारा जीवन बहुत दुखी होता। मेरे पास तो ऐसे कई प्रैक्टिकल केसेस है नहीं, जहाँ भी लड़की को कहीं अटैचमेंट हो गया वो सोचती थी मैं सुसाइड करूंगी, ये लड़के के वहाँ कहीं नहीं जाऊंगी, थोड़ा अच्छे से उसका पीछा किया और बातें समझाई, ट्रीटमेंट की और उसे मुक्त हुई, आकर बड़ा अच्छा हुआ वो तो। ये सब आप लोगों ने मेहनत की, एफर्ट की,
3: पावर से, बिकॉज ये एक पावर है। ना सिर्फ यूथ इसमें फंस रहा है, आज मिडिल एज में जो लोग, हमने बहुत बार बात की है, ऑब्सेशन होके और खुद, जैसे आपने कहा शर्म खुद से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, काउंसलर के पास भी नहीं जा पा रहे, तो क्या मेरे थॉट्स पावरफुल थॉट्स या मेडिटेशन इज
0: आई कैन जस्ट टेल यू के थ्रू दिस टेलीविजन प्रोग्राम लॉट्स ऑफ पीपल हैव डन इट, आई कैन शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बहुत बहुत बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो यूथ हैं चाहे वो मैरिड कपल्स हैं जो आउट ऑफ मैरिज रिश्तों में जुड़ चुके थे, they have overcome it and it's an inspiration. I feel very nice when I meet such people ki look at the power every soul has, jo atma decide kar leti hai ki mujhe ye karna hai wo kar leti hai, and every time hum kisi se aise milte hain it reinforces ki jo apne upar karega usko result zarur milega.
3: Dr. Patel, Sister Shivani, aaj phir ek baar hum apne hi थॉट पावर को क्या मिरेकल देखते हैं, यू नो, ऐसे ऐसे सिचुएशंस जब लगता है कि लेट को किया ही नहीं जा सकता, हम छोड़ ही नहीं सकते, ये दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, हमने मतलब जीवन का एक सच मान लिया है,
0: दर्द को हम, दर्द हमें नहीं छोड़ेगा, हमें दर्द को छोड़ना है,
3: हम दर्द को छोड़ के इक्वेशंस चेंज करके स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. अभी तक तो ये चल रहा था कि बाहर दर्द है उस व्यक्ति के कारण, उस सिचुएशन के कारण मैं कंटिन्यूस पेन में हूँ, पूरा टाइम मेरे मन में एक बोझ रहता है, उस बोझ को लिए जाना ही, उसको ढोए जाना ही मेरी ज़िंदगी है. लेकिन जब अपने आप को पहचानते हैं और इस शक्ति को जानते हैं कि ये मुझ में ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ही क्रिएट किया, ये ऑब्सेशन भी उस व्यक्ति या सिचुएशन ने तो नहीं कहा था, या वो जो कुछ हुआ था वो उस वक्त का सच था, आज उस सच को बदले बहुत वक्त गुजर चुका है, आज का सच ये है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शरीर के साथ हूँ, इसीलिए शरीर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने प्रति मेरी जिम्मेदारी है, बाकी सारी जिम्मेदारियों के साथ इस जिम्मेदारी को भी देखें, अपनी ही ताकत को पहचानें, बदलाव संभव है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे. ओम शांति.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। आजादी के हमारा ईमेल एड्रेस है WATA छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATANKARAAG@gmail.com और RADIO हमारा नंबर है 777-1908 और RADIO हमारा नंबर है 777-1908-908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 777-1908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें। एक छायाचित्र।
1: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित अंग्रेजी राज के दमन लूट सरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
0: भारत में जन्मे एक महान संत, वेदांत के विख्यात और विवेकानंद। उठो, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी बचपन में उनका घर का नाम वीरेश्वर रखा गया। शिक्षा

परमहंस से मुलाकात के बाद नरेंद्र नाथ का जीवन समय पश्चिमी देशों में भारतीय देर तक भारत के गौरव को देश विश्वास था, गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन

0: स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में चेतना भरने के लिए कहा था कि आज के युवकों को प्रत्येक कार्य में सही नहीं लग रहा था, भी कर रहे हो अपना राजयोग के किनारे की दुनिया के सभी धर्म सत्य को ही माधव सेवा कहा। ओजस्वी और सारगर्भित
1: सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड-19 पीरियड में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है उतना ही सरल इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन गया इसका सही जवाब। अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल, मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि रानी दुर्गावती ने 16 सालों तक किस राज्य पर शासन किया। इसका सही जवाब है गोंडवाना। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा। नई दिल्ली से अमित, इंदौर से अक्षय, से संजय अनुरागी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव, सवाल एक बार फिर सुन। ईमेल एड्रेस है WATANKA। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATANKARAAG@gmail.com और RADIOAZADHIND@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है सही जवाब के साथ के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें। कौन थे? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं, वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का। श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जन हमारा ईमेल एड्रेस है www.bankuron.ka/chayachitra। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।
1: जन
0: बांकुरों का एक छायाचित्र।
1: जन गर्जे स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे। भारतीय जन का उद्घोष, राष्ट्र वंदना के विविध आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के वतन
1: ये। अंग्रेजों के अत्याचार भारत माँ के वीर सपूत जब ब्रिटिश शासन के समक्ष चुनौती बनकर लगातार खड़े हो रहे, संग्राम के उस दौर में वासियों के भीतर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चेतना जगाई। उन्होंने दूसरा विवाह राजलक्ष्मी देवी से किया का संग्राम भी देखा, जिसने उनके मन मस्तिष्क

सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। शासन भार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न रहकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। सरकारी नौकरी में होने की वजह से बंकिम बाबू रानी के साथ उसे लौट। बंकिम बाबू ने इस दिशा में विश्व वृक्ष मातरम गीत लोकप्रियता के

0: सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड 19 पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है, उतना ही सरल इसका बचाव भी है।
1: गणेश दामोदर सावरकर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि गणेश दामोदर सावरकर का जन्म किस तारीख को हुआ था। इसका सही जवाब देवी सतीजा और भोपाल से जन गर्जे श्रृंखला। हमारा आज का सवाल है वंदे मातरम श्रृंखला से आज का सवाल पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com। हमारे पास पहुंच जाने चाहिए।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATAN छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATAN। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें। छायाचित्र।
1: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ जब एक ओर पूरा भारत लड़ाई लड़ रहा था, भारत मां के वीर सपूत जब ब्रिटिश शासन के समक्ष चुनौती बनकर लगातार खड़े हो रहे थे, क्रांति के मार्ग पर चलते हुए पूरे देश को एकजुट कर रहा था। उस वीर सपूत का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी न सिर्फ एक उपन्यासकार थे बल्कि वो एक महान कवि, गद्यकार और पत्रकार भी थे। चाहिए जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस 10 दिनों के भीतर हमारे पास

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोता, हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ट्रिपल 7 1 9 0 8 9 0 8 नंबर एक बार फिर सुन ले, 7 7। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना में भूदान आंदोलन में भाग ले, स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वो महान राष्ट्रभक्त थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राष्ट्र सदैव उनके जीवन के केंद्र में रहा। देश के 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। भारतीय तत्कालीन परिस्थितियों के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट कर उन्होंने देश के नेतृत्व में महत्वपूर्ण लोक सत्ता का अंकुश रखा। जब गांधी जी ने से उनके सरोकार बढ़ते चले गए, भारत भूमि से

सन 1920 में जब जयप्रकाश नारायण 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभा देवी के साथ संपन्न हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद सन 1922 में अपनी पत्नी प्रभा देवी को गांधी जी के साबरमती आश्रम में छोड़कर और 1942 की रात दीपावली के त्योहार 1943 में नेपाल में आजाद दस्ते का के कारावास के बाद जयप्रकाश नारायण

0: सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड 19 पीरियड में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड 19 पीरियड में आपको क्या करना है क्या।
1: वतन का राग। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस दर्शन के प्रणेता थे। इसका सही जवाब है एकात्म मानव ड्रॉ द्वारा चुने। बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंत से जयप्रकाश नारायण ने किस क्रांति का आह्वान किया था। सवाल एक बार फिर सुन लें। 5 जून सन 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है डब्ल्यू 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र पर केंद्रित आई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन,
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए
0: दुबे।
2: भारतीय जल थल और
1: परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
0: का इतिहास ऐसे दीप अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे की तरह थी, जो अविभाजित भारत का नाम विनोद बिहारी घोष था, गणेश घोष। लेकिन 1901 करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए, इसे वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन

0: करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था? इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव। आजादी के दुर्लभ
1: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन,
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शौर्य गाथा का
1: 6 बजे और वायुसेना पर बहुत कुछ
2: शाम 7 बजे तक हैं।
0: बहुत बहुत भारतीय स्वाधीनता दीप नहीं उनकी यात्रा संकल्प 22 जून सन 1900 को की सामाजिक में काम भी नौकरी ग्रहण के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी था मन ही बहुत

22 अप्रैल सन 1930 को ब्रिटिश के सामने विश्व था की कर जन उन्होंने नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि KRAAG@ लिए हमारा ईमेल एड्रेस है। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATANKARAAG@। अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें। 10 दिनों के हमारे पास पहुंच जाने चाहिए।

0: हमारा सवाल था और आजादी के रण
1: रूपायन
2: जीवन के विभिन्न पड़ाव वीरों को समर्पित
0: छाया चित्र
1: भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: चौर स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे बुधवार अवकाश।
0: भारतीय स्वाधीनता इतिहास त्रता को महान स्वाधीन चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने से प्रसिद्ध हुए। आज में बंग वातावरण में लक्ष्मण शोषण और पराधीनता के ज्ञान तक स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार और समाज के उत्तर

0: गए।
1: अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए आंदोलन चलाया। 1903 समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में, आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी। स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और 20 जुलाई सन 1993 को अंतिम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना मध्य प्रदेश की। और पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATAN, अवश्य लिखें।
2: ये
1: वन का के भी चाहिए।

0: व्यक्तित्व को एक सार्थक।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर आदर्शों पर निर्भर परिकल्प संचालनालय की
2: स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।

0: कि आज हमारे इस कार्यक्रम का यानी कि आपके अपने वतन का राग।
1: अंग्रेजी राज के दमन लू
2: मार्गदर्शन श्री शिव शेखर।
1: आजादी की यादगार आजादी की यातिरोध में
2: की मूल मस्त धत हमेशा श्री

0: जी राज के दमन लूट और आतंक के
1: 90 आजादी के रणबांकुरों का विजेता है
2: उतना ही सरल
1: आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तर।

विभाग AAG@ वो सभा के लिए है। वो एक राज परिवार सेना पर सा वो गरीबों में आर ए वर्ष बीत चुके थे। वर्ष 1908

0: ये स्मरण कर रहे हैं वीरांगनाओं के लिए पर्याप्त और प्रस्तुति ओ इज़ेट ए ये 08 सही वस्त्र विहीन 9 अगस्त को
1: कुछ पहनाने
0: और 11 नवंबर करें ind@gmail.com
2: ये
0: ARAAG@

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे घने बीहड़ और अनजान जंगल की कल्पना की है जहां दूर दूर तक कोई पगडंडी ना हो और दिशाओं का कोई निशान भी ना हो, चारों तरफ दलदल और कांटेदार झाड़ियां फैली हो। उस जंगल को पार करने के लिए बड़े बड़े विद्वान, नक्शानवीस और बलशाली लोग अपनी किताबों, औजारों और अनुमानों के सहारे घूमते हैं। वे दिन रात भटकते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन अंत में रास्ता ना मिलने पर निराश होकर, थक हार कर किसी पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं कि इस जंगल को पार करना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक छोटा सा बालक आता है जिसके पास न कोई भारी नक्शा है और न कोई हथियार। उसके पास केवल उस जंगल के किसी पुराने और मंझे हुए मार्गदर्शक का हाथ है। वह उस उस्ताद की उंगली पकड़ता है और खेल खेल में सहजता से उस पूरे बीहड़ जंगल को पार करके उस पार के सुंदर नगर में पहुंच जाता है। परमात्मा का मार्ग भी बुद्धिमानों के लिए ऐसा ही एक बीहड़ जंगल है जहां बड़े बड़े तर्क थक कर बैठ जाते हैं। कबीर साहब आज हमें उसी परम मार्गदर्शक और उसकी उंगली पकड़ने का रहस्य बता रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम दार्शनिक सूत्र। कबीर मार्ग अगम है, सब मुनि जन बैठे थाकी, जहाँ कबीरा चली गया गई सदगुरु की साखी।

गही सदगुरु की साखी रे साथ हो, गही सदगुरु की साखी। श्रोताओं, कबीर साहब परम तत्व की प्राप्ति के मार्ग की दुर्गमता और उसकी सहज कुंजी को खोलते हुए कहते हैं, कबीर मार्ग अगम है। यह जो आत्मज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग यानी पथ है, वह सामान्य बुद्धि, तर्क, शास्त्र और इंद्रियों के लिए अत्यंत अगम यानी अगम्य और पहों से बाहर है। सब मुनि जन बैठे थाके और परिणाम यह हुआ कि बड़े बड़े मुनि जन यानी वेद शास्त्रों का मनन करने वाले विद्वान, तपस्वी और ज्ञानी अपनी मानसिक चेष्टाओं, हठ तपस्याओं और भारी भरकम विधियों के बोझ तले बैठे थाके बुरी तरह थक कर निराश होकर बीच रास्ते में ही बैठ गए, उस पार नहीं पहुंच सके। लेकिन कबीर ने उस अगम मार्ग को कैसे पार किया? अगली पंक्ति में वे इसका सीधा और सहज रहस्य उद्घाटित करते हैं। तहां कबीर चला गया जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि थक कर रुक गए, उस परम शून्य और अगम धाम में कबीरा चली गया। यानी कबीर सहजता से आगे बढ़ता हुआ सीधे उस पार पहुंच गया। कैसे? गही सदगुरु की साखी, क्योंकि कबीर ने अपनी बुद्धि का घमंड नहीं किया, उसने केवल सदगुरु की साखी यानी सदगुरु के प्रत्यक्ष अनुभव, उनके जागृत शब्द और साक्षी भाव के सहारे को पूरी दृढ़ता से गही यानी थाम लिया। गुरु के इशारे में उसे बिना फटके सीधे परमात्मा के द्वार तक पहुंचा दिया। यह दोहा केनोपनिषद के इस सत्य का जीवंत प्रमाण है कि ब्रह्मा बुद्धि का विषय नहीं है। जो सोचते हैं कि बुद्धि से जान लेंगे, वे नहीं जानते कि बुद्धि से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। मुनिजन प्रतीक है बौद्धिक विश्लेषण, शास्त्रार्थ और व्यक्तिगत साधना अहंकार के। बुद्धि एक सीमा के बाद थक जाती है क्योंकि वह द्वैत में काम करती हैं। साखी कबीर के दर्शन का वह केंद्रीय तत्व है जहां जीव कर्ता भाव छोड़कर केवल दृष्टा और समर्पित हो जाता है। सद्गुरु का ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवित अनुभव है। कबीर समझा रहे हैं कि जहां बुद्धि के पहिए थम जाते हैं, वहां सद्गुरु की शरण और उसकी साखी चेतना ही साधक को भवसागर के पार ले जाती हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी साधना और अपनी सोच पर नजर डालिए। क्या हम भी अपनी जिंदगी के संशयों और सुखों को दुखों को पार पाने के लिए केवल अपने दिमाग, अपनी चालाकियां और तर्कों के घोड़े नहीं दौड़ा रहे? हम हर चीज को अपनी सीमित बुद्धि से हल करना चाहते हैं और अंत में केवल मानसिक तनाव और थकान ही हाथ लगती है। आज कोशिश कीजिए अपनी इस बौद्धिक थकान को उतारने की। अपने तर्कों का बोझ एक तरफ रखिए और सद्गुरु के वचनों को, उस राम नाम की साखी को पूरी निष्ठा से थाम लीजिए। जब आप कर्ता बनने की जिद छोड़कर साक्षी भाव में टिक जाएंगे और परमात्मा की शरण स्वीकार कर लेंगे, तो जीवन का कठिन से कठिन और अगम मार्ग भी आपके लिए बिल्कुल सहज, सरल और आनंदमय बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर हम आपके साथ और एक बार फिर जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीख रहे हैं, जिसे हम लाइफ स्किल्स कह रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला में बहुत कुछ नया सीखा अपने बारे में और देखा कि किस तरह से माइंड पावर, थॉट पावर जो है वो ना सिर्फ मेरे रिश्तों को, मेरे पूरे जीवन को, बल्कि मेरे बॉडी की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी ठीक करने में हमारी बहुत मदद करता है। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इश्यूज़ जो रिजॉल्व नहीं किए हैं हमने, जो हमारे बैकलॉग में चल रहे हैं, बार बार बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करें। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बहुत सारी बातें तो आपने हमें हमारी बॉडी के बारे में अवेयर करके बताई, ये भी बताया कि एक एक थॉट, एक एक फीलिंग कैसे विजुअलाइज करके हम उसको हील कर सकते हैं। बात करते हैं उन मुद्दों की जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमने पहले भी इसी श्रृंखला में बात की थी कि वो नहीं छूटती हैं, वो जो एक दर्द है, एक गुस्सा है, एक हर्ट है, मतलब वो थॉट आते ही, वो घटना सामने आते ही वो सब कुछ सामने आता है और बहुत मुश्किल होता है पास्ट से निकल पाना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कम आउट?
1: सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसकी इफेक्ट कितनी पावरफुल हो रही है बॉडी पर। आज कई बार कोई इस प्रकार के इमोशंस हो, इमीडिएट हार्ट अटैक आ सकता है। हैंसेल की, जिन्होंने स्ट्रेस पर बहुत काम किया है, उनका कहना है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, उनका कारण है कि वह किसी को माफ नहीं कर पाते और वह जो फीलिंग है उसके कारण उनको इस प्रकार की बीमारी भी हुई। तो जब जब भी वह फाइल खुलती है तो सारी नेगेटिव इफेक्ट, न केवल मन पर, आपने जो कहा मन पर तो इफेक्ट हो ही रही है, लेकिन बॉडी पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। यह भी एक पावरफुल रीज़न है कि इन इश्यूज़ को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जितना उससे ऊपर उठेंगे तब ही आप पूरे स्वास्थ्य को इंजॉय कर सकेंगे।
0: तो क्या करें, मतलब हर बार यही आ जाता है सवाल कि क्या करें, ये रिजॉल्व करें और कैसे करें, उस पर आते हैं। पहले ये बताएं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आई थिंक समवेयर वी नीड टू नो कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, मुझे धोखा दिया था, चीट किया था, बिजनेस में किया था, रिश्ते में किया था, वो मुझे याद आता है और मुझे सारा गुस्सा फिर आता है, लेकिन आता है, उसके थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद चला जाता है क्योंकि बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मेरी बॉडी पर उसका असर क्या पड़ रहा है?
1: तब यही जो टॉक्सिक इमोशंस का हमने समझा था वो सारी इफेक्ट होती है, क्योंकि फिर से सिंपैथेटिक अराउजल होगा, बॉडी पर उसकी इफेक्ट होगी, एंडोक्राइन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम, दैट विल अफेक्ट यू। आपकी जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी भी सप्रेस्ड होगी तो इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होगा, वो ब्रेन के 900 केमिकल्स विल गेट डिस्टर्ब, दैट आल्सो विल हैव अ इफेक्ट।
0: जैसे शिवानी, विल इट इंस्पायर मी मोर कि जब मुझे पता चले कि ये सब कुछ हो रहा है कि मैं रिजॉल्व करूं?
2: या आई वाज जस्ट थिंकिंग, आजकल बहुत अवेयरनेस है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के, कि बहुत सारे कुछ एक महीने या कुछ एक साल से हम ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जम चुके हैं, तो हम एक अलग डाइट को लेते हैं, कुछ दिन अलग निकालते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं।
0: ना
2: व्हाट अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन हियर? इतनी टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट की हुई हैं इतने सालों से, कई बार तो जैसे बचपन से हमने पकड़ी हुई हैं वो बातें, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे अगर, तो व्हाट मिरेकल्स इट कुड क्रिएट। क्योंकि जब भी कोई अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इमीडिएटली फील करता है कि मैं रिजुविनेट हो गया, इट्स लाइक अ न्यू बॉडी ऑल टुगेदर,
0: बिल्कुल।
2: क्योंकि इट्स लाइक पॉइजन, इट्स लाइक ये सारा जो गंध था वो मेरे शरीर से निकल गया। अब इसी तरह जो सारा गंध मैंने यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है, इसको अगर मैं क्लीन कर दूँ तो हम कितना हल्का महसूस करेंगे यहाँ, आई विल फील लाइट, और जितना पकड़ कर रखा है आई फील वेरी हैवी। तो लेट्स स्टार्ट डिटॉक्सिफाइंग द माइंड, डिटॉक्सिफाइंग द सोल,
1: एंड दिस इज नो मोर नेसेसरी, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो तो मृत्यु के बाद चले जाएंगे, कि यहाँ जो टॉक्सिन्स आपने भर के रखे हो दूसरे जन्म में भी आप कैरी ऑन करने वाले।
0: फिर हम वो कहेंगे कि पास्ट लाइफ के कारण हो रहा है ये सब कुछ, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर कैरिंग।
1: हाँ, और दिस कैन बी अ पावरफुल मोटिवेशन। अभी भी कुछ समय पहले मेरे पास एक पेशेंट था, वो करीब 25 साल का लड़का होगा, फादर के प्रति उसको बड़ी हिटरेट थी, क्योंकि फादर ने बचपन में उसको बाहर नहीं जाने देते थे, घर में ही रखते थे। लोअर मिडिल क्लास एरिया था कि भाई गलत संगत में आ जाएगा, और उसके कारण उसमें डर निर्माण हो गया। वो अभी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, लोगों को मिल नहीं पाता है, तो बड़ा हेट्रेड था फादर के प्रति। एक दो सेशन के बाद मैंने उसको कहा कि तुमने किया, उससे ऊपर कहते नहीं नहीं हो सकता है। फिर एक दिन बोलता है डॉक्टर साहब करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ। फिर और एक सेशन में मैंने कहा देखो अभी आपने नहीं किया ना, तो अगले जन्म में भी तुम इसको ले जाओगे। फिर नेक्स्ट सेशन हाँ हाँ नाउ आई एम फ्री, मुझे इससे मोटिवेशन मिल गया कि अगर अभी मैं फ्री नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी इस हैट्रेट को, इस रिवेंज को मैं ले जाऊंगा। तो मैंने उसको पूरा छोड़ दिया।
0: एक्चुअली वो रिवेंज और हैट्रेट, उससे निकलने के लिए हम लोगों को छोड़ते हैं, व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, जिंदगी मतलब किधर किधर किधर घूमते हैं।
2: सी हम लोगों को छोड़ सकते हैं, सपोज मेरा आपके साथ चीट आपने मुझे किया, मैंने आपको छोड़ दिया, चलो लेट मी से कि देर इज नो अदर सोल्यूशन, मुझे आपसे अलग होना है, मैंने आपको छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन क्या नफरत को छोड़ दिया? उस नफरत को तो फिर भी पकड़ के रखा ना, तो आपसे विड्रॉ हो गई। इट वॉज नॉट अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम पीपल, इट वॉज अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम द इमोशन, बट वी विड्रॉ फ्रॉम पीपल, होल्ड ऑन टू द इमोशन, सो द डैमेज इज मल्टीफोल्ड। कि मैं बार बार बार बार वही चिंतन कर रही हूँ, एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो शरीर का बेनिफिट है, लेकिन माइंड अगर टॉक्सिक है तो वो माइंड तो हर काम कर रहा है ना, हर रिश्ते में जा रहा है, हर प्रोफेशन में, मेरे हर फील्ड में वो टॉक्सिक माइंड वर्क कर रहा है। इसका मतलब मेरे जीवन का हर क्षेत्र है चलो मेरा शरीर ठीक नहीं चलेगा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मेरे रिश्ते तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि मैं बॉडी डजंट डू एनीथिंग इनटू द रिलेशनशिप्स, मैं अपने करियर में तो फिर भी थोड़ा ठीक चल लूंगा, बट माई माइंड इज एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, हर स्फीयर पे मन है, इस पे टॉक्सिन्स अगर है means there's going to be damage everywhere. फिर मैं हर एक से नाराज़ होता रहूँगा, घर में लोगों से, प्रोफेशन में अपने कुलीग से, हर एक से नाराज़ होता रहूँगा without realizing कि जहर तो यहाँ भरा हुआ है।
0: वो मतलब वो एक जहर की जो एक वो नहीं कैरी करते थे पुराने ज़माने में कि अंगूठी में डाल के रखते थे। See, I think हर बार एक ड्रॉप उसका वो डाल देते हैं। तो सब डिटॉक्सिफिकेशन की बात की शिवानी ने, कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, उसकी तो टेक्निक्स हम समझ गए, ऐसी डाइट, अब इसको करें कैसे? नहीं होते रिजॉल्व, कितनी कोशिश करते हैं, इट जस्ट यू नो इट्स लाइक आई विल नॉट से इट कम्स, बट आई क्रिएट, कंटिन्यू टू क्रिएट इवन इफ आई डोंट वांट टू, इट्स जस्ट कम्स,
2: इट्स बिकॉज़ वी डोंट वांट टू फॉरगिव। Forgiving is not difficult. Forgiving is very easy.
0: We don't want to forgive.
2: अब मैं क्यों नहीं फॉरगिव करना चाहती? क्योंकि गलती उनकी इतनी बड़ी थी, दर्द मुझे इतना हुआ था, तो क्यों मैं फॉरगिव करूं? अगर मैं फॉरगिव करती हूं तो फिर वो और

0: अपना नुकसान. एंड फिर वो इतना संस्कार पक्का होता जाता है, इट बिकम्स माई नेचर टू होल्ड थिंग्स अगेंस्ट पीपल, नॉट बींग एबल टू फॉरगिव बिकॉज आई से उनकी गलती इतनी बड़ी थी. बहुत सारे भाई बहनें हमें मिलते हैं हु आर कैरिंग बर्डन पास्ट, हुआ है जीवन में, इट कुड बी एनी थिंग. कुछ समय पहले एक बहन से मिलना हुआ जो ये टेलीविजन का प्रोग्राम काफ़ी समय से देख रहे हैं, और उन्होंने आकर अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो 11 वर्ष की थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक दिन अपने किसी दोस्त के घर भेजा जो अकेला था. वो अबाउट 50-year-old पर्सन था जिसकी फैमिली किसी और सिटी में गई थी. तो पेरेंट्स ने कहा वो अंकल अकेले हैं, आप आज उनके घर चले जाओ. And that person, and this girl was 11 years old. That 50-year-old man physically abused this 11-year-old girl. Today, that lady is 40+. She's 40+. लेकिन ये 30 साल से ऊपर की जर्नी में उसने अपने पेरेंट्स के प्रति नफरत पकड़ के रखी है. She openly says, I hate my parents. I thought she'll say, I hate that person, जिसने ये किया. She said, उससे मुझे कोई इतना लेना देना नहीं, गलती किसकी थी इसमें, मेरे पेरेंट्स की जिम्मेवारी थी मेरा ध्यान रखना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहां भेजा, तो पूरी गलती मेरे पेरेंट्स की. शी इज कैरीड दैट रिजेंटमेंट इन हर फॉर मोर देन 30 years नाउ. रिजल्ट आज वो एडिक्शंस में है और वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल के आ रही, क्योंकि इतनी नफरत मेरे अंदर भरी है कि जब तक मैं ये नहीं लेती आई डोंट फील गुड एट ऑल. नहीं तो वो माइंड में मेरे वही थॉट्स चलती रहती है. मैरिज हुई, बेटी है, लेकिन डिवोर्स हो गया, हस्बैंड के साथ नहीं बनी. करियर वाइज कुछ भी नहीं कर पा रही, फिजिकली भी कुछ एक एलिमेंट्स लगी हुई है. पेरेंट्स के साथ रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बना, ओनली बिकॉज 30 years से ऊपर वो नफरत पकड़ के रखी है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये रिजेंटमेंट नहीं कैरी कर सकते, इवन इफ द पास्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी वेरी डैमेजिंग. चाहे कुछ भी हुआ हो, वी नीड टू फॉरगिव, क्योंकि उसी से हमारी हीलिंग होगी. नहीं तो उस बहन को देखकर मुझे लगा, देखो पूरी जीवन इस नफरत को पकड़ने की वजह से इमोशनली, फिजिकली, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशन, चारों एस्पेक्ट्स पर कहीं भी हेल्दी नहीं चला.
1: आई थिंक डॉक्टर पटेल, क्यों हम फॉरगिव नहीं करते? क्योंकि शायद हम उससे पहले, उस इंसिडेंट से पहले जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन चाहते हैं. तो अब वो तो आएगा नहीं, क्योंकि लगता है वो तो खत्म हो गया, तो इसीलिए अब वो प्राप्ति तो होने वाली है नहीं, इसलिए हम फॉरगिव नहीं करते हैं. हम उसको पकड़ के रखते हैं या रिजेंटमेंट या गुस्से में रहते हैं कि वो तो प्राप्त नहीं होगा, वो तो वापस नहीं मिल पाएगा जो था हमारा इतना सुंदर.
2: नहीं, हम अपने डैमेज तो सोचे ना. वैसे शिवानी बहन ने कहा, मुझे मेरे दो पेशेंट के एग्जाम्पल याद आए. भाई यहाँ तो डिप्रेशन सिर्फ हुआ है, वहां तो सिज़ोफ्रेनिया हुआ है. बोथ ऑफ देम वर फिजिकली अब्यूज्ड, आज दोनों सिज़ोफ्रेनिक हैं. तो देखो, उन्होंने इतना उसको दिल पर ले लिया कि पागलपन आ गया. तो अगर वहीं पर माफ कर देते जल्दी से, कोई टेक्निक को अच्छे से समझ लेते, तो बीमारी नहीं होती.
1: माफ करना क्यों जरूरी है?
0: क्योंकि माफ करने से मेरी कितनी सारी हीलिंग हो गई ना. देखो, जैसे गिरीश भाई ने कहा, एक एक थॉट हमारे सेल पर वर्क कर रही है, माइंड पर वर्क कर रही है, हमारे बॉडी के हर सेल पर वर्क कर रही है. तो हेट्रेड की थॉट है ना, आई एम कैरिंग अ होल बंच ऑफ थॉट्स ऑफ हेट्रेड, तो पूरे इफेक्ट नहीं आएगा. एनर्जी है, वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होंगी. जिनसे भी मैं मिलूंगी उनको मुझसे कौन सी वाइब्रेशंस मिलेंगी? इट्स लाइक द परफ्यूम यू आर यूजिंग, दैट इज़ योर एनर्जी. तो अगर आपने नफरत की परफ्यूम यूज़ की हुई है, आपके किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा. आई कम नियर यू एंड आई मूव अवे. कई लोगों से जब हम मिलते हैं, हमें लगता है नॉट वेरी कम्फर्टेबल इनसे मिलने से. कुछ हुआ नहीं, कहेंगे इनका ऑरा बहुत भारी है, इनकी वाइनो बहुत भारी भारी है ये. कुछ लोगों से आप मिलेंगे, आपको लगेगा इनसे मिलकर अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ वॉट पैकेट दे आर कैरिंग हियर. तो इसलिए आपका सिर्फ एक रिश्ता नहीं खराब होता, यू नो, जिसमें आपने वो एक्सपीरियंस किया. आप किसी भी रिश्ते को ब्यूटीफुली नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, क्योंकि आपकी अपनी ऑरा बहुत भारी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जीवन, ठीक है, एक हादसा कितना भी बड़ा एक हुआ है, देयर इज लॉट्स मोर टू हैपन, बहुत कुछ है जीवन में और. लेकिन अब आगे की डेस्टिनी, इसके बाद मुझे कैसी क्रिएट करनी है, दैट्स कम्प्लीटली इन माई हैंड्स नाउ. नफरत पकड़ के रखो, दिस विल बी द डेस्टिनी. फॉरगिव, the world will be beautiful for me. There was another lady, she was abused when she was a child.

0: Today she's 35 plus. I think she's one of the most sincere watchers I have seen of this program. Ek bhi episode shayad nahi miss kiya, notes banaye, study kiya. She had been physically abused. And ek din wo program mein baithi thi, live program mein. And humme us pe commentary kar rahe the ki let go. Jinko bhi humne aaj din tak pakad kar rakha tha, aaj hum unko jaane dete hain. After the program, she got up and said, 30 years ke baad, आज उस व्यक्ति को जाने दिया. उस एक इंसिडेंट की वजह से शी डिड नॉट गेट मैरिड, लोगों से वो दूर हो गई. शी हेट पीपल, उस एक एक्सपीरियंस की वजह से. लेकिन थोड़ी देर बैठी, उसके डैमेज को समझा. शी सेड आई लेट हिम गो टुडे. जीवन परिवर्तन हो गई. टुडे शी इज अ डिफरेंट पर्सन. सो हम ही खुद को डैमेज करते, हम ही खुद को हील कर सकते हैं. दिस इज ट्रिमेंडस पावर दैट वी हैव.
1: Really, you know, this is powerful. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है. और एक इम्पोर्टेंट बात कि भी क्यों मैं माफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे कारण मेरे पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ. मैं तुमको माफ़ नहीं करना चाहता हूँ, इट्स ओके. लेकिन मेरे पर जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, एटलीस्ट आई वांट टू राइज अबाउट दैट.
2: तो मैं अपने आप को तो माफ करूँ कम से कम.
1: नहीं, उसको ही माफ कर, तभी वो इन्फ्लुएंस से आप ऊपर उठेंगे. तो मेरे फायदे के लिए मैं किसी को माफ कर रहा हूँ, तो करना ही चाहिए.
0: एंड माफ करना मतलब भी क्या, मतलब उस इंसिडेंट और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद. इट डजंट हैव टू कम बैक ऑन माई माइंड. दैट इज माफ करना ना. माफ मीन्स वो बात बार बार बार बार मेरे माइंड में चलती रहती है, वो थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं. माफ करना नीड नॉट मीन कि मैं उनके साथ जाकर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन जाऊँ. माफ करना इज नॉट कि मैं उनसे रोज बातें. माफ करना जस्ट मीन्स वो मेरे चित्त पर अब नहीं है,
2: वो मेरे थॉट्स में ना आए, मैं उनके वो जो फीलिंग्स थी वो ना. बट इज इट पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं? मेरे हाथ में नहीं होता ना. सी अगेन, व्हेन इट okay, I create, but then वो जब क्रिएट कर रही होती हूँ मैं, तो मैं उसके वश में हूँ.
0: तो अपने आप को फिर से समझाओ ना. सी अगेन अवेयरनेस, ये थॉट्स आ रहे हैं, मैं फिर अपने आप को समझाऊँ. एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, बाकी नुकसान मैं अपने कर रही हूँ. एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, जो भी किया, बिजनेस में चीट किया, अब्यूज किया, जो एक नुकसान किया, येस दैट पर्सन हैज डन व्हाट डैमेज. बाकी नुकसान कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ. टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, दिस इज चेंजिंग माई थॉट्स. और इसमें परमात्मा का प्यार और शक्ति हमें वो हील करने में मदद करता है. कोई मेरे साथ अगर ऐसा करता है, कोई भी प्रकार का धोखा, इट्स अ रिजेक्शन. मुझे एक रिजेक्शन मिलता है किसी रिश्ते में. परमात्मा से मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो मेरी हीलिंग को ईजी कर देता है. जस्ट बिकम्स वेरी सिंपल टू डू द प्रोसेस. बट ओनली इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ डैमेज उन्होंने नहीं किया, ये रिपीटेड करने से डैमेज मैं कर रही हूँ. दिस आई हैव टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ. आपको बिजनेस में किसी ने चीट किया, क्या नुकसान किया? पैसे ले गए ना आपके, सारे पैसे ले गए लेट से. लेकिन आपके मन का, शरीर का और आपके रिश्तों का अब नुकसान कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ. किसी ने आपको फिजिकली अब्यूज़ किया, फिजिकली किया ना, लेकिन अब माइंड का, रिलेशनशिप्स का, प्रोफेशन का नुकसान मैं कर रही हूँ. दिस इज हाउ आई विल हैव टू कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड कम आउट ऑफ इट.
1: और कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स भी याद करो. ग्राहम स्टेन का उदाहरण बहुत सारे लोगों ने सुना है कि जो उड़ीसा में एक फादर थे, उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया था. तो एक साल के बाद पत्रकारों ने उनकी पत्नी को यह प्रश्न पूछा कि आपके पति और बच्चों के हत्यारों के बारे में आपके दिल में कैसी भावनाएं? तो उस महिला ने बहुत ही पावरफुल उत्तर दिया. उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन मैंने उन्हें माफ कर दिया था. तो बताने में भी जबरदस्त शक्ति चाहिए.
2: तो उनका जो रख के भी क्या फायदा?
0: इट्स नॉट अबाउट क्या फायदा. शी चेंज्ड हर डेस्टिनी. वो पूरा परिवार अपना देश छोड़ के इन लोगों की सेवा के लिए आए थे. इन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया. नाउ दिस लेडी, शी इज लॉस्ट ऑल हर थ्री फैमिली मेम्बर्स. शी कुड हैव लिव्ड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन पेन. शी इज वर्किंग टुडे विद द सेम पीपल. शी इज सर्विंग देम, शी इज हेल्पिंग देम, शी इज चेंज्ड हर डेस्टिनी. आप वो सिचुएशन को तो नहीं चेंज कर सकते हो. यू कैन गेट दोज पीपल बैक, बट यू कैन चेंज हाउ यू आर गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड. दैट्स द पावर. क्रिएटिंग माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर, not only holding back my past. This is the power we have.
2: In fact,
1: you remember such example. Aur isme bahut bada healing power hai. Kehte I forgive you. ये तीन शब्दों में बहुत जबरदस्त शक्ति है बस।
2: यहाँ एक मेरे को एक और भी एस्पेक्ट लेना है रिजेक्शन का, जो आपने कहा कि ये तो सिचुएशंस वो थी कि लोग चले भी गए और लोगों से मैंने अपना नाता भी नहीं रखा बिकॉज आई वॉज रिजेक्टेड या मुझे धोखा हुआ। देर आर टाइम्स वेन आई हैव बीन रिजेक्टेड बट आई एम वेटिंग। आई नो समबडी जो एक रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ और उसके बाद वो लड़का कहीं गया, लड़की यही है, अब वो रिजेक्शन है या जो भी, द गर्ल इज स्टिल वेटिंग, यू नो, वो वेट और उसके प्रति वो नफरत भी है कि मुझे रिजेक्ट किया, किस कारण किया क्या, और वो जो वो वेट, तो आज भी पूरा जीवन 2 साल बाद भी वो जीवन वैसा का वैसा है और आना वेट भी, और तो ये इसको कैसे हील करें क्योंकि ये पूरी जिंदगी एक तरह के रिजेंटमेंट में चल रही है, बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो और ख़राब होने शुरू हो गए क्योंकि वेट जो है वो बहुत पेनफुल है और ऑब्सेशन, उसको कैसे हैंडल करें।
1: भी अपोजिट है नहीं, यहाँ पर जो लेट गो करने की बात थी, हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में वो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट इतना पावरफुल है कि व्यक्ति डिटैच नहीं हो पाता है। तब अगर ये अच्छी तरह से मन को समझाए कि डिटैच होना ही मेरे लिए सॉल्यूशन है, मैंने अटैचमेंट रखा तो मेरी सुख शांति आनंद सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस कुछ भी हो जाए मुझे डिटैच होना है।
2: अच्छा, हम अगर ऑब्सेशन की बात करते हैं रिलेशनशिप में कि वो व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो गया और दूसरा व्यक्ति चला गया है,
0: कुछ नहीं है इसमें, एक ही थॉट है, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, एक थॉट है, विच इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है ये थॉट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये लोग अपने आप को वही थॉट देते जाते हैं, हमारे पास इतनी लंबी लंबी ईमेल आती है, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, सेज हु, सेज मी, चेंज वॉट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बिना हमारा जीना बंद हो जाएगा, लेकिन आई लिव लव टू गिव माई सेल्फ दिस थिंकिंग कि मैं इसलिए दर्द में हूँ, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। तो जब तक आप अपने आप को वो थॉट दोगे आपको वही फीलिंग आएगी, आपकी वो वेट पीरियड चलती रहेगी। चेंज योर थॉट पैटर्न, आई एम अ पावरफुल सोल, मेरी लिविंग, मेरी हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था उनके साथ, यू नो, बात करना, रिश्ता, वो ठीक है, बट डिपेंडेंसी नहीं है। इमिजिएटली आई विल बी एबल टू गेट बैक माई सेल्फ टू दैट डिग्निटी। ये एक्चुअली अपनी डिग्निटी को बहुत नीचे कर देना है कि एक किसी की वजह से आई एम नॉट रेडी टू लिव, आई कांट डू विदाउट दिस पर्सन।
2: इनफैक्ट उसके बारे में हम बात भी नहीं कर पाते किसी और से क्योंकि अंदर अंदर खुद को बहुत बुरा लग रहा
0: है नहीं, और खुद पर बहुत गुस्सा आता है,
2: हाँ, पता? कि हम क्या कर रहे हैं?
0: खुद से नफरत होती है कि मैं कितनी कमजोर हूँ। इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन कि मैं इस ड्रग के बिना नहीं रह सकती, मैं इस सिगरेट के बिना नहीं रह सकती, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती। तो जैसे बाकी एडिक्शन से हम अपने आप को ज़बरदस्ती हटाते हैं ना, सपोज आई वॉन्ट टू गिव अप सम एडिक्शन, मैं उसको ज़बरदस्ती छोड़ती हूँ, थोड़े दिन तकलीफ होगी, इट्स अ विड्रॉल सिम्टम। इसी तरह से रिश्ते में भी जो नहीं वर्कआउट कर रहा आपको अपने आप को ज़बरदस्ती हटाना है, यू विल हैव टू ब्रेक अवे, थोड़े दिन तकलीफ होगी लेकिन उस तकलीफ में अपनी काउंसलिंग खुद करते जाएंगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करते जाएंगे, धीरे धीरे एडिक्शन ओवरकम हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, थोड़े दिन करते हैं फिर बीच में कहते हैं मैं एक बार फोन करके बात कर लूं, बस 2 मिनट के लिए बात कर लूं, तो इट्स लाइक 10 दिन मेहनत किया, 10 दिन मेहनत किया, सिगरेट छोड़ा, विड्रॉल सिम्टम हुए, थोड़ी सी विल पावर आई, फिर जाके एक सिगरेट ले ली, तो आपका वो पूरा 10 दिन का एफर्ट वेस्ट हुआ, यू हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन। सोचे, डिसाइड करें, यू वॉन्ट टू मूव अवे, डू इट स्ट्रिक्टली, एवरी वन हैज द पावर टू डू इट, इट ओनली डिपेंड्स आप अपने आप को कौन सी थॉट्स देंगे। हम अपने आप को ही, यही अगर आपके आस पास किसी और को हो रहा होता आप उनको क्या थॉट्स देते, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है, जो थॉट्स आप दूसरों को देते हैं वही थॉट्स अपने आप को देने हैं।
1: और देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो अपने आप को ये सोचो कि भी और क्या क्या संभावना है, ये एक व्यक्ति से मैं अटैच हूँ उसको छोड़ नहीं पा, और कुछ संभावनाएं हैं वो लिखो सचमुच, तो भी आपको मिल जाएगी कि भी और भी कई संभावनाएं हैं, आई कैन मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स, मैं कोई अच्छा प्रोफेशन कर सकती हूँ, और कोई मेरे लिए अच्छी संभावनाएं हैं। और एक बात ये बहुत समझने की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे केसेस में कि अगर वो अटैच ही रहे तो दुख में जीवन जिया, डिप्रेशन में जिया, बीमारियां आई, ख़त्म हो गए, और जो इससे बाहर निकल गए तो फिर उनका जीवन और बहुत अच्छा हो गया। इवन बाद में तो ये कहने लगे कि अच्छा हुआ कि हम इससे बाहर आ गए, अगर नहीं आते तो शायद हमारा जीवन बहुत दुखी होता। मेरे पास तो ऐसे कई प्रैक्टिकल केसेस है नहीं, जहाँ भी लड़की को कहीं अटैचमेंट हो गया वो सोचती थी मैं सुसाइड करूंगी, ये लड़के के वहाँ कहीं नहीं जाऊंगी, थोड़ा अच्छे से उसका पीछा किया और बातें समझाई, ट्रीटमेंट की और उसे मुक्त हुई, आकर बड़ा अच्छा हुआ वो तो। ये सब आप लोगों ने मेहनत की, एफर्ट की
2: पावर से, बिकॉज ये एक पावर है। ना सिर्फ यूथ इसमें फंस रहा है, आज मिडिल एज में जो लोग हमने बहुत बार बात की है, ऑब्सेशन होके और खुद, जैसे आपने कहा शर्म खुद से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, काउंसलर के पास भी नहीं जा पा रहे, तो क्या मेरे थॉट्स पावरफुल थॉट्स या मेडिटेशन इज
0: आई कैन जस्ट टेल यू के थ्रू दिस टेलीविजन प्रोग्राम लॉट्स ऑफ पीपल हैव डन इट, आई कैन शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बहुत बहुत बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो यूथ हैं चाहे वो मैरिड कपल्स हैं जो आउट ऑफ मैरिज रिश्तों में जुड़ चुके थे, they have overcome it and it's an inspiration. I feel very nice when I meet such people ki look at the power every soul has, jo atma decide kar leti hai ki mujhe ye karna hai wo kar leti hai, and every time hum kisi se aise milte hain it reinforces ki jo apne upar karega usko result zarur milega.
2: Dr. Patel, Sister Shivani, aaj phir ek baar hum apni hi थॉट पावर को क्या मिरेकल देखते हैं, यू नो ऐसी ऐसी सिचुएशंस जब लगता है कि लेट को किया ही नहीं जा सकता, हम छोड़ ही नहीं सकते, ये दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, हमने मतलब जीवन का एक सच मान लिया है
0: दर्द को, हम दर्द हमें नहीं छोड़ेगा, हमें दर्द को छोड़ना है,
2: हम दर्द को छोड़ के इक्वेशंस चेंज करके स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. अभी तक तो ये चल रहा था कि बाहर दर्द है उस व्यक्ति के कारण, उस सिचुएशन के कारण मैं कंटिन्यूस पेन में हूँ, पूरा टाइम मेरे मन में एक बोझ रहता है, उस बोझ को लिए जाना ही, उसको ढोए जाना ही मेरी ज़िंदगी है. लेकिन जब अपने आप को पहचानते हैं और इस शक्ति को जानते हैं कि ये मुझ में ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ही क्रिएट किया, ये ऑब्सेशन भी उस व्यक्ति या सिचुएशन ने तो नहीं कहा था, या वो जो कुछ हुआ था वो उस वक्त का सच था, आज उस सच को बदले बहुत वक्त गुजर चुका है, आज का सच ये है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शरीर के साथ हूँ, इसीलिए शरीर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने प्रति मेरी जिम्मेदारी है, बाकी सारी जिम्मेदारियों के साथ इस जिम्मेदारी को भी देखें, अपनी ही ताकत को पहचानें, बदलाव संभव है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे. ओम शांति.